दोस्तों, जिंदगी कभी भी हर दिन एक जैसी नहीं रहती। कभी धूप होती है तो कभी छांव, कभी सफलता कदम चूमती है तो कभी असफलता हमें ठोकर देकर आगे बढ़ना सिखाती है। हारना बुरा नहीं है, हार मान लेना बुरा है, क्योंकि हर हार अपने साथ एक सीख लेकर जाती है। जो गिरकर संभलना सीखते हैं ना, वही एक दिन ऊंचाइयों को छूते हैं।

दोस्तों जानते हैं, किसी के आने से जिंदगी संवर सकती है, लेकिन अपने आत्मविश्वास से जिंदगी बदल भी सकती है। रिश्ते अनमोल है, मगर सबसे मजबूत रिश्ता अपने हौसलों से होता है। तो अगर आज कोई दूर है ना, तो उदास मत होइए। हो सकता है जिंदगी आपको ये सिखा रही हो कि सबसे पहले खुद का साथ निभाना सीखिए। जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख लेता है ना, तब दुनिया भी उसका साथ देने लगती है।

दोस्तों हवा की तरह बनिए, जो बंद दरवाजे के सामने रुकती नहीं है बल्कि अपना नया रास्ता ढूंढ लेती है, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो हालात नहीं हौसलों के सहारे चलते हैं। तो जिंदगी में हमेशा हवा की तरह चलते रहिए, ताजगी बांटिए, उम्मीद जगाइए और हर नए दिन के साथ नई ऊर्जा लेकर आगे बढ़िए।

0: സമയം 7 മണി കഴിഞ്ഞ് 59:55. ഇനി 8 മണിക്ക് സമാചർ പ്രഭാത്, തുടർന്ന് മോർണിംഗ് ന്യൂസ് ഡൽഹി റിലേ.
1: കാച്ച് ദ റെയിൻ, ബാരിഷ് കേ പാനി കി ഏക് ഏക് ബൂന്ദ് കോ ഹമേ ബചാനാ ഹൈ, തോ മേരാ ഖാസ് ആഗ്രഹ ഹൈ, വർഷാ കാ ബൂന്ദ് ബൂന്ദ് പാനി ഹം മിൽകർ കേ ബചായേ.
2: ജൽ ഹൈ തോ ഹം ഹൈ. ആയിയെ ഘരോ ഓഫീസോ മേ റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് തക്നീക് അപ്നായേ. റീചാർജ് പിറ്റ് ഓർ ഷാഫ്റ്റ് ബൻവായേ, അനുപയോഗി ബോർവെലോ കോ ഠീക് കരേ, ജലാശയോ സേ ഗാദ് നികാലേ, അധിക് സേ അധിക് പേഡ് ലഗായേ. ഇസ് ബാരിഷ് ആയിയെ ജുഡേ കാച്ച് ദ റെയിൻ അഭിയാൻ സേ.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे. दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए. गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया. और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे. इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
4: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं. जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है. इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है. 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है. यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है. इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है. यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है. आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद.
3: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. जींद के बाद वे चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब

0: पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद SCS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब और श्री अनंतपुर साहिब रेलवे स्टेशनों सहित 20 राज्यों के 74 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का जलंधर से ही वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों का पुनर्निर्माण दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास प्रोग्राम में से एक अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत किया गया है। वह जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह भारत के दो सबसे पवित्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली डायरेक्ट रेलगाड़ी है, जो हफ्ते में 3 बार चलेगी। प्रधानमंत्री नंगल डैम तलवाड़ा मुकेरिया नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर दौलतपुर चौक करतौली नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे और करतौली अंबाला ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे आज तीनों राज्यों के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इनका सबसे अधिक लाभ देश की युवा शक्ति को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें केरल के 6 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस नीति के तहत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा।
4: नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार वार्षिक दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव का आयोजन करेगी। इसमें नवाचार करने वाले युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत और नीति निर्माता एक मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे, साझेदारियां विकसित करेंगे और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करेंगे। शुरुआत में यह नीति 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य राजधानी को देश के अग्रणी नवाचार और उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित करना है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता सह

0: प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। एजेंसी ने कहा है कि परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और काउंसलिंग कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी। गुजरात आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमाकांच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा संबंधी मुद्दों पर एक बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया करेंगे। केरलम में आज से रमाण मास का शुभारंभ हुआ। केरलम में मलयालम पंचांग के कंगंडम महीने को रमाण मास के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति के लिए रमाण का पाठ करते हैं। आज से कंगंडम महीने की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही आज से राज्य के अनेक घरों और मंदिरों में प्रतिदिन रमाण पाठ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके और पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। उन्होंने भारत और कतर में भारतीय समुदाय के प्रति स्नेह और भारत कतर संबंधों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को भी याद किया। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमन की ओर ध्यान देने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने लोगों की हत्या, जबरन हिरासत, घरों पर छापेमारी और आम नागरिकों, महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा की है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने वामपंथी चरमपंथी आतंकवादियों को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए नई वीजा प्रतिबंध नीति लागू की है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये नीति ऐसे तत्वों को रोकने के लिए है जो हिंसक गतिविधियों के जरिए लोगों की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल देखने के लिए रविवार को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। फाइनल मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया और न्यू जर्सी में होने वाले फाइनल के साथ इसका समापन होगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को एएफसी अंडर 17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। भारत लगातार दूसरी बार महिला एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट पेपर लीक के बाद अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच आयोजित नीट यूजी 2026 का परिणाम घोषित होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है, नीट यूजी का परिणाम जारी, सफल होने वालों में 58% छात्राएं। अमर उजाला के शब्द हैं, पंजाब के आर्यन और हरियाणा के पंशुल अव्वल, 19 बच्चों

0: को 700 से अधिक अंक। अमेरिका और ईरान के बीच ताजा सैन्य संघर्ष को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाया। जनसत्ता ने इस खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, होर्मुज पर जहाजों में भारतीय नागरिकों की तैनाती पर रोक, नौवहन प्रशासन महानिदेशालय का निर्देश। पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़, एक श्रद्धालु की मौत, लोकसत्ते की सुर्खी है। पत्र लिखता है, खराब मौसम और बारिश के बाद उमड़ी 10 लाख की भीड़। राजधानी में 16 साल के बाद सबसे लंबा मानसून ब्रेक। दिल्ली में अगले 4-5 दिन और अच्छी बारिश होने की उम्मीद बेहद कम, हिंदुस्तान की सुर्खी है। दैनिक भास्कर ने अनुमान शीर्षक से खबर दी है, दो नए सिस्टम से रफ्तार पकड़ेगा मानसून, 20 से उत्तर और मध्य भारत में तेज बारिश, 40 से अधिक देशों के साथ साझा समुद्री अभ्यास, 20 जुलाई से होगा, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है, कोच्चि स्थित सदर्न नेवल कमांड में होगी ऑपरेशन की शुरुआत। लोकसत्ते ने साइबर अपराध पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, शीर्षक दिया है, डिजिटल भारत पर साइबर अपराध का साया। पत्र लिखता है, साइबर अपराध की सबसे चिंताजनक बात है कि इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। दुनिया के कई देशों में बैठे अपराधी भारत के नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं, ऐसे में सभी को सावधान रहना जरूरी है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to flag off India's first hydrogen-powered train from Jind Railway Station in Haryana this morning. Delhi government approves 400 crore rupees startup and incubation policy to promote innovation and self-employment. National Testing Agency declares results of NEET UG 2026 re-examination. Gujarat ATS arrests 5 persons from Patan district in connection with its probe into Jaish e Mohammed terror module. And in men's cricket, hosts England beat India by 4 wickets in second ODI to level 3 match series 1-1. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will visit Haryana, Chandigarh and Punjab today. During his visit to Haryana, the Prime Minister will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station. He will also lay the foundation stone and dedicate to the nation various development projects worth around 14,700 crore rupees at Eklavya Stadium in Jind and address the gathering on the occasion. The launch of the first hydrogen-powered train marks an important step towards the adoption of clean and sustainable mobility in the railway sector. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With its introduction, India joins a select group of countries that have operational hydrogen-powered trains. These include Germany, Japan, China and the United States. More from our correspondent.
3: India has set a new global benchmark with this project, surpassing many other nations currently testing this technology. While countries like Germany and China usually run 2 or 3 coach hydrogen trains, India has developed a 10 coach formation. It is designed to carry nearly 2,600 passengers, which is the highest capacity among compared hydrogen trains globally. This hydrogen train is powered by a 3,200 horsepower propulsion system, making it one of the most powerful hydrogen powered train sets in operation. The train is powered by hydrogen fuel cell technology, which converts hydrogen into electricity to propel the train. The process produces only water vapor as a byproduct, resulting in zero carbon emissions during operation. The train is equipped with multi-layer safety systems capable of detecting hydrogen leaks, heat, flames and smoke. The hydrogen facility has been established at Jind to enable safe, efficient and reliable hydrogen-powered rail operations. Anand Kumar, Akashwani News, Jind.
2: From Jind, the Prime Minister will travel to Chandigarh, where at around 1:40

0: सबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में हमेशा ऐसी संगति चुननी चाहिए जो हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाए और हमारी सोच को सकारात्मक बनाए। अच्छे लोग वही हैं जिनकी उपस्थिति से हमारे भीतर का श्रेष्ठ गुण प्रकट हो सकता है और जो हमें हर दिन और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल का।
2: शंकर प्रसाद खूंटे जी लिखते हैं, मैं दृष्टिबाधित हूँ और बीएड स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद शंकर प्रसाद खूंटे जी। और अगला संदेश हमें मिला है गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी जी का।
2: गांव खिंदासा तहसील कोरायत जिला बीकानेर राजस्थान से कानाराम चौहान जी।
3: और शोभा राणे जी लिखते हैं ठाणे महाराष्ट्र से।
2: गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रम्मा रानी निषाद, निखिल कुमार निषाद और नैतिक कुमार निषाद।
3: आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर संदेशों के लिए। तो प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। श्रोताओं, एक बार फिर से हम प्रस्तुत हैं नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओं, हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक उद्भव और विकास की। आज हम चर्चा करेंगे मुद्रण से आधुनिक पुस्तकों तक की यात्रा पर। श्रोताओं, जिस आधुनिक पुस्तक को हम हाथ में लेकर आज पढ़ते हैं उसके पीछे लगभग 600 वर्षों का इतिहास है। हमने अब तक सुना कि मुद्रण कला के आने से पहले पुस्तकें हाथों से लिखी जाती थी। भारत में ताड़पत्र, भोजपत्र और बाद में कागज पर ग्रंथ और साहित्य लिखा जाता था।
3: जी हाँ श्रोताओं, यूरोप में चर्म पत्रों और कागज पर लिखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे मानव सभ्यता मुद्रण की ओर बढ़ने लगी। चीन में लगभग 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच लकड़ी के ब्लॉक्स बनाए जा चुके थे जिन पर अक्षरों को उकेर कर और उसमें स्याही लगाकर पूरे पृष्ठ की छपाई की जाती थी।
2: ये तकनीक हस्तलिखित तकनीक से कहीं अधिक तेज और सुविधापूर्ण थी। 11वीं शताब्दी में चीन में धातुओं या लकड़ी से अलग अलग अक्षरों को बनाया जाने लगा और उनसे शब्द और वाक्य बनाए जाने लगे। ये आधुनिक मुद्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
3: जी श्रोताओं, 15वीं शताब्दी को मुद्रण की दिशा में एक मील का पत्थर माना जाता है जब जर्मनी के ग्यूटेनबर्ग ने 1450 में छापने की मशीन का आविष्कार किया।
2: जी,
3: इसके द्वारा एक ही पुस्तक की सैकड़ों प्रतियां तैयार हो सकती थीं।
2: गुटेनबर्ग ने एक धातु का फार्मा बनाया जिसमें चल अक्षर थे। चल अक्षरों का अर्थ है उनके फार्मे में अक्षरों को वाक्यों के रूप में सजाया जाता था और उनमें स्याही पोतकर कागज पर छापा जाता था। छपाई के बाद उन्हीं धातु के अक्षरों को फिर से नए वाक्यों के अनुसार संयोजित कर लिया जाता था।
3: जी श्रोताओं, गुटेनबर्ग की मशीन से छपने वाली पहली पुस्तक बाइबल थी जिसे गुटेनबर्ग बाइबल कहा जाता है। यही तकनीक आधुनिक मुद्रण कला की नींव बनी।
2: इसके बाद हम सभी जानते हैं कि मानव सभ्यता ने एक शानदार मुद्रण तकनीक को देखा। अब डिजिटल मुद्रण का युग है जिससे कुछ ही समय में हजारों लाखों पृष्ठ छापे जा सकते हैं। इसके बाद आया ई बुक का जमाना जिसमें हम रह रहे हैं। पहले पुस्तकों को रखने के लिए विशाल पुस्तकालय हुआ करते थे, लेकिन अब हजारों पुस्तकें

0: छोटे से डिवाइस में ही रखी जा सकती हैं।
1: जी, तो श्रोताओं, कहा जा सकता है कि मिट्टी की पुस्तकों से पेपिरस तक, भोज और ताड़ पत्रों से होते हुए चर्म पत्रों तक, वहां से गुटेनबर्ग के छापे खाने और फिर डिजिटल पुस्तकों तक की पुस्तकों की यात्रा सच में अनूठी है।
0: जी बिल्कुल, सच में अनूठी है। तो श्रोताओं, कैसी लगी आपको ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
1: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से बताया गया है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किन भौगोलिक कारणों से हुई और इसे मूड़दार पर्वत श्रृंखला क्यों कहते हैं।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
3: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
2: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
3: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
2: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय?
3: तो आइए सुनते हैं एक नाटक,
2: कैसे बना हिमालय।
3: आज रिद्धि,
2: नव्या
3: और रिदित
2: सब बहुत खुश है
3: क्योंकि उनका परिवार
2: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
4: चलो चलो, दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
5: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
4: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
5: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
4: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है,
5: बहुत मजा आएगा।
3: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
2: माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
3: वे इस सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
2: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
3: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ गए।
2: बातचीत होने लगी। जब सबने अपने परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
4: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
3: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
4: क्या 20 करोड़ साल?
3: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे, सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
4: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
3: नव्या, अब भाई थोड़ा सा धीरज तो रखो। अब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? रिद्धि तुम बताओ।
5: ये तो बहुत आसान है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
4: रुको रुको, मैं बताती हूँ।
3: तुम बताओ।
4: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया भी तो कहते हैं।
3: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
4: टैथिस महासागर।
3: वाह,
4: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
3: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग

0: होकर खिसकने लगे।
1: अलग होकर खिसकने लगे?
0: अरे एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
1: सर फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
0: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
2: लेकिन सर हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
1: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
0: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे, लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
2: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
1: सर आप तो टेथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
0: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
1: जी।
0: देखो विशाल और शांत महासागर ये एक प्राचीन महासागर था, जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
1: फिर क्या हुआ सर, जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
0: बेटा उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टैथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गईं।
1: अच्छा?
0: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गईं।
2: सर मैं कुछ बताऊं इसके बारे में?
0: हाँ बेटा क्यों नहीं।
2: ठीक वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
0: बहुत अच्छे। और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही है। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
1: अब समझ आया। सर इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है। इसके अलग अलग अनुमान हैं। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
2: सर एक खास बात तो हम भूल ही गए, टेथिस सागर का क्या हुआ?
0: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि टैथिस सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
2: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
1: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टानें मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टानें भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टानें समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
1: अच्छा तो ये बात है।
0: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग

0: 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
1: माउंट एवरेस्ट।
0: सही जवाब। अच्छा बच्चों, एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों, नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
2: सर, मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
0: भला वो क्या?
2: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े, हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
0: बिल्कुल सही बात।
3: तो साथियों, अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी। कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न। पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है स्वामी की दादी।
1: इस कार्यक्रम में स्वामीनाथन नामक एक बच्चे की सुंदर कहानी है, जिसमें उसके और उसकी दादी के बीच प्रेम और स्नेह के संबंध को बताते हुए संदेश दिया गया है कि बच्चों को अपने बड़ों और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम मुख्य रूप से पारिवारिक मूल्यों के महत्व पर बल देता है।
2: बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थीं। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था।
3: आजा, आजा, आजा।
2: बड़ी प्रसन्नता से भरकर वो बोला,
4: ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है।
3: अच्छा?
2: उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई।
4: तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है,
2: स्वामीनाथन बोला।
3: सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए,
2: दादी ने पूछा।
4: उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वो यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं।
3: अच्छा,
2: दादी काफी प्रभावित हुई।
3: उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा,
2: उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गईं, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गडमड करती हुई।
4: बस काफी है दादी,
2: उसने रूखे स्वर में कहा।
4: मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिले?

0: पर मिलते होंगे, है ना?
1: दादी ने पूछा।
2: अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं।
0: चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है, तुम्हारे दादा कभी-कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी-कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हां, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वो मेडल अब कहां है? मैंने वो तुम्हारी बुआ को दिया, और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियां बनवा ली, और वो भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूं कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और
2: अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती?
0: बोलो
2: दादी। जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था।
0: सच? बड़ा बहादुर लड़का है।
2: तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो?
0: अरे नहीं नहीं,
2: तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा।
1: स्वामी नाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की।
2: राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे।
3: अच्छा।
2: राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे, और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई?
1: उसने कहानी खत्म होने पर पूछा।
0: नहीं नहीं बेटा, सुन रही हूँ।
2: अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे?
0: 2 शेर राजम पर झपटे थे।
1: दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया।
2: मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ, और तुम नींद में ना जाने क्या क्या ऊल जलूल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती।
0: अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारा लड़का है।
1: दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ।
2: दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है।
0: मैं एक-एक शब्द पर विश्वास करती हूँ।

0: दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा,
1: जो भी उसे झूठा कहेगा वो उसे गोली मार देगा।
2: अच्छा।
0: दादी ने इसका समर्थन किया और हरीशचंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा।
3: तो हरीशचंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चे को इस तरह से खो दिया, लेकिन बाद में
0: दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वो भी सो गईं।

0: ഈ ഗാനത്തോടെ മഴവില്ല് വിവിധ ഭാഷാ ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ സമാപിക്കുന്നു.
1: ഏ ആകാശവാണി കാ തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്ര ഹെ ആയി ആപ് സുൻതെ ഹെ ഹിന്ദി പാട്ട്. അധ്യാപിക ഹെ അനുപം രശ്മി. ഛാത്രായം ഹെ തന്മയ പിള്ളൈ ഓർ മുസ്കാൻ ജിഷാർ.
2: नमस्ते बच्चो.
3: नमस्ते अध्यापिका जी.
2: कैसे हैं आप लोग?
3: हम अच्छे हैं.
2: चलिए तो आज अब हम अपनी कक्षा शुरू करते हैं. तो मैं आपको क्या पढ़ा रही थी? कौन सी कहानी मैंने पहली कक्षा में पढ़ाई मुस्कान?
3: दो गोरैया.
2: हाँ, कौन सी कहानी पढ़ाई तन्मया जी?
3: दो गोरैया.
2: उसके लेखक का नाम बताइए.
3: भीष्म साहनी.
2: हाँ जी, तो भीष्म साहनी के मैंने आपको शुरू कर दिया था ना. मैंने क्या बताया था पहली कक्षा में कि इस कहानी में पिताजी किसके बारे में बोल रहे हैं? आंगन में कैसे पक्षी हैं, उनके घर में चूहे हैं, उनके घर के चूहे उनको रात में सोने नहीं देते, उनको तंग करते हैं, कभी डिब्बे खुलते हैं, कभी प्याले टूटते हैं. यहाँ तक मैंने आपको बताया था, राइट?
3: हाँ
2: जी. अब इससे आगे, तो एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है. ओके, 20 चूहे हैं घर के अंदर, तो उसमें से एक चूहा जो अंगीठी, मालूम है बच्चों, अंगीठी को जिसको आप अंग्रेजी में फायर पॉट बोलते हो, उसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आग दहकाने का बर्तन या चूल्हा. आमतौर पर ये मिट्टी, लोहे या पीतल की बनी होती है और इसमें कोयला या लकड़ी जलाई जाती है. आजकल तो हमारे घर में गैस है, राइट? पहले जमाने में जब गैस नहीं थी तब इसका इस्तेमाल किया जाता था. किसका? अंगीठी का, जिसको आप अंग्रेजी में फायर पॉट बोलते हो. मगर हिंदी में हम उसको फायर पॉट नहीं बोलते, हिंदी में हम क्या बोलते हैं? ये क्या होती है? एक आग दहकाने का बर्तन. मेरी जो मम्मी थी ना, हम लोग ने अंगीठी देखी है, अंगीठी के ऊपर हम लोग खाना बनाते थे. मैंने देखी है, आप लोग ने देखा है, आपके यहाँ पर भी होगा ना चूल्हा, जिसको आप मलयालम में अडब बोलते हो ना. हाँ. आपने देखा होगा, लकड़ी से जलाया जाता है.
3: मेरे पुराने घर में था.
2: तो हाँ, चूल्हा थोड़ा अलग होता है, अंगीठी थोड़ी अलग होती है. अंगीठी थोड़ी छोटी होती है, चूल्हा थोड़ा बड़ा होता है. ओके, चूल्हे में क्या करते हैं बच्चों? लकड़ी जलाई जाती है, मगर हम इस पे कोयला जलाते हैं अंगीठी में.
3: हाँ.
2: कोयला, कोयला मतलब मालूम है? कोल, COAL, कोल. उसको ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है.
3: हाँ.
2: ज्योग्राफी में पढ़ा है?
3: हाँ.
2: भूगोल की कक्षा में पढ़ा है? हाँ, पढ़ा है ना. तो लेखक कहते हैं अंगीठी को एक चूहा है जो क्या करता है, वो अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है. शायद वो बूढ़ा है, उसे बहुत सर्दी लगती है. ओके, तो इसका मतलब है कि वो चूहा बूढ़ा हो गया है, उसको सर्दी लगती है, इसलिए वो कहाँ बैठता है? अंगीठी के पीछे. ठीक है, मैं किसके बारे में बहुत बात कर रही? एक चूहा, 20 चूहे हैं घर में पिताजी के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं. कितने चूहे हैं?
3: 20 चूहे.
2: उनमें से एक चूहा कहाँ बैठना पसंद करता है तन्मया?
3: अंगीठी के पीछे.
2: हाँ, अंगीठी के पीछे क्यों बैठना पसंद करता है मुस्कान?
3: क्योंकि वो शायद बूढ़ा है और उसको बहुत सर्दी लगती है.
2: हाँ, बहुत अच्छे. ठीक है, एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है. एक दूसरा चूहा है, वो क्या करता है? वो बाथरूम की टंकी

0: में बोलते हैं बिल्ली को कैट, सबको मालूम है ना, ये जो बिल्ली है ना बच्चों, ये क्या बोलते, पिताजी क्या बोलते, ये बिल्ली को भी मेरे घर रहती नहीं है, मगर वो आती है मेरे घर में, कभी कभी झांक कर चली जाती है, मेरे घर को ऑब्जर्व करके चली जाती है। बिल्ली आती होगी आपके घरों में, है ना, शहरों में बिल्लियां बहुत ज्यादा है, आती है। हाँ, तो वही लेखक क्या बोल रहे हैं, वो हमारे घर में रहती नहीं है, मगर वो उसको घर बहुत पसंद है, इसलिए वो कभी कभी झांक जाती है, कभी कभी वो आती है झांक कर चली जाती। झांकना मतलब टू पीप, अंग्रेजी में आप जिसको जो टू पीप बोलते हैं ना, उसको हिंदी में हम झांकना बोलते हैं। कौन झांक कर चली जाती है?
1: बिल्ली।
0: मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, ना मन आया तो बाहर से फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। अगर उसका मन होता है तो क्या करती है वो बिल्ली,
1: दूध पी लेती है।
0: उसको दूध बहुत पसंद है, घर के अंदर वो दूध पी जाती है, इसलिए आपके घर में बिल्ली है तो ध्यान दीजिएगा। ओके, हमेशा, मगर फ्रिज के अंदर नहीं जा सकती बिल्ली, अगर आपने दूध बर्तन में रखा है किचन के अंदर तो वो आएगी और दूध पीकर जाएगी। तो कभी अगर मन नहीं हुआ ना बिल्ली को, मन नहीं हुआ उसका कि मैं आज मेरे को घर के अंदर नहीं जाना है, तो ठीक है मैं जा रही हूँ, मैं कल फिर आऊंगी, ये बोलकर चली जाती है। देखो उन्होंने यहाँ पर क्या किया, बिल्ली का मानवीकरण किया है ना, हमको कैसा लग रहा है, ये बिल्ली भी हमारे जैसी ही है। पक्षी भी अगर इस प्रकार से वर्णन किया जाए कि वो मनुष्य के जैसा है तो उसे कहते हैं मानवीयकरण। ठीक है,
1: ठीक है,
0: आगे चले।
1: हाँ।
0: अच्छा, शाम पड़ते ही दो तीन चमगादड़ कमरों के आर पार फैलाए कसरत करने लगते हैं, और जैसे ही शाम होती है, मेरे घर के अंदर बहुत सारे वायर हैं, तार हैं, उस तार के ऊपर के चमगादड़ हैं। चमगादड़ मालूम है आप लोग को, बैट, जिसको अंग्रेजी में आप लोग बैट बोलते हैं, उसको हम हिंदी में चमगादड़ बोलते हैं, वो ना तार के ऊपर उल्टे लटक जाते हैं। ठीक है, मालूम है, वो लोग आकर बहुत बिगाड़ते हैं, वो लोग कृषि को बहुत नुकसान करते हैं, खेती बाड़ी का नुकसान करते हैं, मगर घर में आकर ऐसा नुकसान वगैरह नहीं करते हैं। तो ये सब हमारे घर के आसपास रहने वाले जीव जंतु हैं, जिसको अपनी डेली लाइफ में हम इनको देखते रहते हैं। तो इसीलिए पिताजी क्या बोलते हैं, जैसे ही शाम होती है ये चमगादड़ भी आ जाते हैं, ये बैट भी आ जाते हैं, और अपने पर फैला ले, अपने जो उनके जो पंख होते हैं ना, उनके पंख होते हैं, उन पंख को डैने बोलते हैं हिंदी में, वो डैने को स्प्रेड कर लेते हैं और तार के ऊपर उल्टे लटक जाते हैं। तो जैसे ही वो उल्टे लटक जाते हैं तो पिताजी क्या समझते हैं कि ये लोग व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इसलिए पिताजी बोलते ये लो, अब ये चमगादड़ भी घर में आ गए, पहले से ही तो बिल्ली थी, पहले से ही तो चूहे थे, कौवे थे, मैना थी, गौरैया का प्रवेश नहीं हुआ है। ओके, तो गौरैया भी धीरे धीरे आएगी, तो अब ये चमगादड़ भी आ गए, और घर में कबूतर भी हैं, है ना, कौन है घर में, एक चमगादड़ भी है, बिल्ली भी है, आम के पेड़ के ऊपर कौन है,
1: पक्षी,
0: पक्षी है, है ना, तो बहुत सारे जीव जंतु लेखक के घर में रहते हैं, मतलब इस कहानी में जो पिताजी हैं उनके घर में रहते हैं। तो दिन भर गुटर गु करते रहते, ये जो कबूतर है ना, आपने कबूतरों की आवाज सुनी है?
1: हाँ, सुनी है।
0: कबूतर को देखा आप लोगों ने, तो कॉमन पक्षी, हम हमेशा देखते रहते हैं। हमारे स्कूल में उल्लू आते हैं, देखिएगा जरूर।
1: हाँ, मैंने हाँ,
0: देखा है आप लोग हमारे स्कूल में,
1: छोटा सा उल्लू,
0: छोटे छोटे व्हाइट कलर के, सफेद कलर के उल्लू आते हैं, वो बहुत शुभ माने जाते हैं। उल्लू कौन है मालूम है, हमारी गॉडेस है ना, हमारी देवी है ना, देवी लक्ष्मी के वाहन है उल्लू, तो इसलिए उनका घर में आना शुभ माना जाता है। कहीं कहीं, सब जगह नहीं, कभी कभी कबूतर आते हैं हमारे स्कूल में भी। अब कबूतर को किसका सिंबल माना जाता है, किसका प्रतीक माना जाता है मालूम है आपको?
1: शांति।
0: हाँ, वेरी गुड, कबूतर को शांति का प्रतीक माना जाता है। ओके, कि चारों तरफ शांति होनी चाहिए, कहीं युद्ध नहीं होना चाहिए, इसलिए कबूतरों को उड़ाया जाता है शांति के प्रतीक के रूप में। सबसे ज्यादा कबूतर आपने एक जगह बहुत फेमस है बॉम्बे में देखा है आपने?
1: बॉम्बे में नहीं गए।
0: नहीं देखा, नहीं देखा है ना, एक जगह है बॉम्बे में गेटवे इंडिया के पास।
1: हाँ,
0: गेटवे इंडिया के पास आपने कभी कभी तस्वीरों में देखा होगा है ना।
1: हाँ, हाँ,
0: बहुत सारे कबूतर आते हैं वहाँ पर, बच्चे और सब लोग उनको दाना देते रहते हैं।
1: हाँ, हाँ,
0: तो आपने दिलवाले दुल्हनिया नहीं देखी, DDLJ देखी है?
1: हाँ,
0: तो DDLJ में जब शाहरुख उसके जो फादर इन लॉ को इम्प्रेस करने के लिए वो क्या करते हैं, वो कबूतरों को दाना देते रहते हैं, है ना।
1: हाँ, तो
0: कबूतरों को दाना खिलाना और कबूतरों को किसी ओकेशन पर उड़ाना हमारी संस्कृति में, हमारी कल्चर में शुभ माना जाता है, मगर यहाँ पर उल्टा है। इस कहानी में पिताजी क्या बोल रहे हैं, जब देखो ये कबूतर गुटर गु करते रहते हैं, गुटर गु करते रहते। तो ये गुटर गु क्या है,
1: कबूतर की आवाज?
0: हाँ, गुटर गु क्या है तन्मय?
1: कबूतर की,
0: कबूतरों की आवाज। पिताजी को कबूतरों की आवाज उतनी अच्छी नहीं लगती। तो इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं, बर्रे भी हैं, और चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए हैं। ओके, पिताजी क्या बोलते हैं, ये सिर्फ कबूतर नहीं है, अब तो घर में छिपकलियां भी, आप छिपकलियां तो सब जगह रहती।
1: हाँ,
0: क्या इसको छिपकलियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग? लिजर्ड्स बोलते हो ना, उसी को हिंदी में छिपकली बोलते हैं, मालूम है आप लोग को?
1: मालूम।
0: हाँ, तो आपने देखी होगी ना, सब जगह रहती है, कॉमन लिजर्ड तो सभी घरों में रहती है। तो इसलिए पिताजी बोल

0: बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, चलो ये घर में छिपकलियां भी हैं, कॉकरोच भी हैं, बर्रे, बर्रे को उसको बोलते हैं हम लोग तिलचट्टे, कॉकरोच ओके, और चीटियों, माय गॉड चीटियों की तो पूरी आर्मी है मेरे घर में, ओके फौज, फौज मतलब आर्मी,
1: आर्मी।
0: जो बच्चों ये फौज जो है ना ये उर्दू वर्ड है, इसका हिंदी वर्ड भी है, मालूम है इसे हिंदी वर्ड नहीं मालूम, मैं बताऊं,
1: हाँ,
0: सेना,
1: सेना,
0: आप समझ में आया, बोलो सेना,
1: सेना,
0: सेना, हमें उर्दू भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए मगर हमें थोड़ी हिंदी भी अच्छे से आनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है,
1: ठीक है,
2: ठीक है।
0: तो पिताजी क्या बोलते हैं, इस घर में तो चींटियों की फौज है, फौज पूरी, जब जहाँ देखो वहाँ चींटियों की आर्मी है, चींटियों की सेना है, वो अपने घर के अंदर की बात बता रहे हैं। अच्छा तो ये सब इसके बारे में ये कौन बोल रहा है कि मेरे घर में ये भी है, मेरे घर में तिलचट्टे भी है, मेरे घर में बर्रे भी हैं, ये कौन बोल रहा है बच्चों,
1: पिताजी बोल रहे हैं।
0: हाँ ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एक दिन दो गौरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़ कर मकान देखने लगी, और एक दिन क्या हुआ बच्चों, दो गौरैया सीधी उनके कमरे के अंदर, पिताजी के कमरे के अंदर आ गई और उनसे बिना पूछे, ये तो पक्षी है उन्हें बोल सकते हैं क्या, बोलो हमारी परमिशन पूछ सकते हैं क्या,
1: नहीं बोल
0: नहीं बोल
1: सकते,
0: सकते ना, तो पिताजी क्या बोल रहे, देखो ये गौरैया सीधी मेरे घर के अंदर आई और इन्होंने मुझसे अनुमति भी नहीं मांगी, और बिना अनुमति के बिना परमिशन के ये पूरे घर को ऑब्जर्व कर रही है, तो निरीक्षण मतलब देखना, टू ऑब्जर्व ओके, निरीक्षण तो कौन कर रहा है ये निरीक्षण बिना अनुमति के,
1: गौरैया,
0: गौरैया के बारे में बता रही हूँ मैं आपको। एक दिन क्या हुआ बच्चों, उस मकान में, उस घर में जहाँ पिताजी हैं, माँ हैं और एक बेटा है, उस घर के अंदर कौन आई, दो गौरैया आई, और दो गौरैया बिना किसी परमिशन के आई, बिना किसी अनुमति के आई ओके, उन्होंने पिताजी से अनुमति नहीं मांगी, इसलिए पिताजी को गुस्सा आ रहा है, वो बोल रहे हैं कि इन दो गौरैयों ने मेरी कोई अनुमति नहीं मांगी और घर को आराम से देख रही है, बहुत अच्छे से देख रही है, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रही है कि कहाँ रहें क्या करें, है ना, तो मकान का निरीक्षण कर रही है, मतलब मकान को देख रही है, कौन देख रहा है मकान को,
1: गौरैया,
0: हाँ कितनी है गौरैया,
1: दो
0: दो गौरैया, तो इस पाठ का नाम
1: दो
0: गौरैया, हाँ दो गौरैया, कि वो मकान का निरीक्षण कर रही है कि उनके रहने योग्य है या नहीं, कभी वे किसी रोशनदान पर जब बैठती हैं तो कभी खिड़की पर, फिर जैसे आई थी वैसे उड़ गई ओके, तो वो मकान को बहुत सूक्ष्म तरीके से देख रही है, क्यों, क्योंकि उन्हें अपना घोंसला बनाना है, वो यहाँ पर रहने आ गई है, कौन रहने आ गई है अब यहाँ पर,
1: दो
0: गौरैया, इसीलिए वो बहुत ऑब्जर्व कर रही हैं, एक जगह से उड़ रही हैं, दूसरी जगह जा रही, देख रही हैं, भाल रही हैं कि कहाँ अपना घोंसला बनाए, इसीलिए कभी किसी खिड़की पर जाकर बैठ जाती हैं, कभी किसी खिड़की के ऊपर जा बैठती हैं ओके, तो रोशनदान, रोशनदान का मतलब खिड़की, खिड़की का मतलब
1: विंडो,
0: हाँ जिसको आप लोग विंडो बोलते हैं उसी को हम हिंदी में बोलते हैं खिड़की और उर्दू में बोलते हैं रोशनदान,
1: ठीक
0: तो भूलिएगा नहीं,
1: हाँ
0: ठीक है, लिखते समय आप कुछ भी यूज कर सकते हैं ओके, लिखने के समय आप रोशनदान भी यूज कर सकते हैं, खिड़की भी यूज कर सकते हैं, लिखने के समय कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके, मगर आपको ये सब मालूम होना चाहिए कि ये उर्दू का वर्ड है कि हिंदी का वर्ड है, ठीक है,
1: ठीक है।
0: ओके, पर दो दिन बाद हमने क्या देखा, कभी खिड़की पर, फिर जैसे आई थी वैसे उड़ गई, पर दो दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है, तो जैसे ही वो आई थी उन्होंने, गौरैया ने देखा कि उनको कहाँ बैठना है क्या करना है, उन्होंने देखा और देखकर उड़ गई ओके, मगर दो दिन के बाद पिताजी ने क्या देखा, पिताजी ने देखा ऊपर जो फैन होता है ना, पंखा होता है ना, फैन तो अंग्रेजी वर्ड है ठीक है, तो फैन को क्या बोलते हैं हिंदी में, पंखा, पंखे के बीच में जो गोला होता है, उस गोले के थोड़े ऊपर थोड़ा स्पेस होता है ना, थोड़ी जगह होती है, उस जगह पर उन्होंने अपना बिस्तर बिछा लिया, बिस्तर मतलब
1: बेड,
0: हाँ ओके, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना घोंसला बनाना शुरू कर दिया, किसने अपना घोंसला बनाना शुरू कर दिया,
1: गौरैया,
0: गौरैया ने, जैसे ही वो पहले आई उन्होंने क्या किया गौरैयों ने,
1: घर का पूरा जांच किया,
0: हाँ घर का पूरा परीक्षण किया, घर को चेक किया, क्यों चेक कर रही थी वो घर को,
1: घोंसला बनाने के
0: घोंसला
1: लिए,
0: बनाने के लिए ना, कि कहाँ बनाए, और उसके बाद उन्होंने एट लास्ट कहाँ पर घोंसला बनाया,
1: पंखे के ऊपर,
0: हाँ पंखे के ऊपर, पंखे के बीच में जो गोला होता है ना, उस गोले के ऊपर जो थोड़ी सी जगह होती है ना, वहां पर उन्होंने अपना बिस्तर बिछा लिया ठीक है, और सामान भी ले आई और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही, वो अपना सामान सब कुछ लेकर ले आ गई, अब जब घर बनाया तो सामान भी तो होगा ना भाई, अब हम अपना घर बनाते तो क्या हम अपने घर में सामान नहीं रखते हैं, वो लोग भी अपना सामान लेकर आई गौरैया, और उन्होंने क्या किया, अपना सामान वगैरह उन्होंने अच्छे से ठीक कर लिया और बैठ कर अच्छे से गाना गाने लगे ओके, तो वो अपने आप को एंजॉय कर रही, तो कौन एंजॉय कर रहा है अपने आप को,
1: दो गौरैया,
0: दो गौरैया, तो अच्छा बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद बच्चों,
1: धन्यवाद अध्यापिका जी।
2: अभी तक आप सुन रहे थे हिंदी पाठ। अध्यापिका थे अनुपम रश्मि, छात्राएं थी तन्मया पिल्लई और मुस्कान जिशार। इसी के साथ आज का हिंदी पाठ यही समाप्त होता है। नमस्कार।

0: ഇനി കേൾക്കാം സമാചാർ സന്ധ്യ, തുടർന്ന് ന്യൂസ് അറ്റ് 9 ഡൽഹി റിലേ.
1: ആകാശവാണി സെ സമാചാർ സന്ധ്യ കെ സാത്ത് മേ പ്രിയങ്ക അരുണ. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया. जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया. प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध. सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर रवाना होंगी. नीति आयोग ने निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया. गुजरात शीर्ष पर, इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु. और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया. श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया. उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली रूप से लोकार्पण भी किया. इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं. अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं. श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया. ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है. प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है. श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है.
2: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है. पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है.
1: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है.
2: साथियों, केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि पंजाब की जनता को केंद्र की हर स्कीम का लाभ मिले, लेकिन कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार में यहाँ लूट का खुला खेल चल रहा है. बीते 12 वर्षों में केंद्र से पंजाब को लाखों करोड़ रुपए भेजे गए. इस पैसे से गांव के रास्ते बनते, नहरें बनती, मंडियां बनती, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पैसे को सही जगह खर्च नहीं किया.
1: श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की.
2: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, ये आपके लिए अवसरों का समय है. खेलो इंडिया स्पोर्ट पॉलिसी आपके लिए लाई गई है. आज भारत में नई स्पोर्ट इकोनॉमी विकसित की जा रही है. इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है. मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए. हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है.
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार पंजाब में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है.
3: आज पंजाब में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम चल रहे हैं। 1,800 करोड़ रुपए की लागत से 30 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अब तक जालंधर कैंट, आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और मोहाली स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है। 12 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है, 4 अमृत भारत सर्विसेज चल रही है और पंजाब में पूरा 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया है रेलवे के नेटवर्क को।
1: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी

0: में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की 52 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले आज मंत्रियों के समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राममोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
1: ये राजकीय यात्राएं मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर की जा रही हैं। तीन देशों की ये यात्रा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से भी ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा होगी।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसारावपेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सफर संगठित स्वैच्छिक कार्यों की शक्ति और निस्वार्थ सेवा के चिरस्थायी मूल्यों का प्रमाण है। नई दिल्ली में श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी की पुस्तक आरएसएस 800 सेवा, एकता और बलिदान की एक शताब्दी का विमोचन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से एकता और राष्ट्रीय चेतना के आदर्शों को मजबूत किया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आरएसएस ने हर प्रतिकूल परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों, सेवा और लोकतंत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। इस योजना के अंतर्गत देश भर में 1,90,000 करोड़ रुपए से अधिक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन और यात्री रेलगाड़ी की टक्कर में 2 स्कूली बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पूर्वी रेलवे ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने का आदेश दिया है। कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। इसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत

0: भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से सबसे अच्छी स्थिति वाले राज्यों का उल्लेख है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज 1% से अधिक की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 965 अंक ऊपर चढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 262 अंक के उछाल के साथ 24,334 पर पहुंच गया। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे ऊपर आकर 96.28 रुपए पर बंद हुआ।
0: सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। ये अधिनियम खेलों में डोपिंग को रोकने, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डोपिंग रोधी मानकों के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक व्यापक वैधानिक आधार प्रदान करता है। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट ऑलराउंडर गैरी सोबार्स का आज निधन हो गया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का भी कारनामा अपने नाम किया। सर गारफील्ड सोबर्स ने वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला विश्व की चौथे नंबर की चीन की खिलाड़ी चेन युफई से होगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में रविवार तक तेज बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर होंगी। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट गैरी सोबर्स का निधन। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh. Flags off India's first hydrogen-powered train from Jind. Prime Minister says Centre is committed to ease of living and new opportunities for every citizen with the spirit of Nagrik Deva Bhava. Government convenes all-party meeting on Sunday ahead of monsoon session of Parliament. President Draupadi Murmu to embark on 3-nation visit to Moldova, North Macedonia and Romania from Sunday. Niti Aayog releases Investment Friendliness Index 2026. Gujarat emerges as the top performer, followed by Maharashtra and Tamil Nadu. Legendary West Indian cricketer Gary Sobers passes away. An Indian team announced for FIH Women's Hockey World Cup to be held in Belgium and Netherlands next month. Salima Tete named the captain. Prime Minister Narendra Modi launched multiple development projects

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आज के कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ एस पी शर्मा। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी शुक्रिया, थैंक यू।
1: और सबसे पहले सुनते हैं मुख्य समाचार।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस गेन ओवर 1%, सेंसेक्स एड्स नियरली 1000 पॉइंट्स एंड निफ्टी रिक्लेम्स 24,300 लेवल। एशियन स्टॉक मार्केट इंडिसेस एंड इन द नेगेटिव टेरिटरी एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज।
1: घरेलू शेयर बाजार आज 1% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में करीब 1000 अंकों की तेजी आई। निफ्टी ने 24,300 के स्तर को फिर से प्राप्त किया। एशियाई शेयरों में आज गिरावट का रुख और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़े।

0: And before we take our main stories in detail, here is a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज 1% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 965 अंक ऊपर चढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 262 अंक की बढ़त के साथ 24,334 पर पहुंच गया। हालांकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार की बात करें तो मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.2% की गिरावट आई। इससे पहले बाजार आज सुबह थोड़ी तेजी के साथ खुले थे और इंडेक्स की बड़ी कंपनियों में उछाल की वजह से पूरे सत्र के दौरान ऊपर की ओर

0: Benchmark domestic equity indices ended over 1% higher today. Sensex surged by 965 points to close at 78,151. Nifty gained 262 points to settle at 24,334. However, in the broader market on the National Stock Exchange, mid-cap 100 index dropped 0.4% and the small-cap 100 index fell by 0.2%. Earlier, the markets opened on a moderately positive note and sustained their upward trajectory throughout the session, supported by gains in index heavyweights.
1: Sensex की बात करें तो आज 30 में से 24 कंपनियों के शेयरों में तेजी दर्ज हुई. सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में टेक महिंद्रा के शेयरों में 3.9%, कोटक महिंद्रा बैंक में 3.4% और टाटा कंसल्टेंसी में 3% का उछाल देखा गया. वहीं दूसरी तरफ सनफार्मा में 0.9%, कैंट में 0.7% और भारतीय एयरटेल में 0.6% की गिरावट आई.
0: In the sectoral indices on the BSE, 14 out of the 25 sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, private banks as well as top 10 bank index jumped 1.8%. Mid-small private quality tilt index and BankEx rose by 1.6% and Realty added 1.4%. In contrast, telecommunications dropped 1.5%, capital goods dipped 1.3%, then healthcare lost 1.2%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,500 companies declined, 1,722 companies advanced, and 190 companies remain unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे ऊपर चढ़कर ₹96.28 पर बंद हुआ. एसपी कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है.
2: जी शुक्रिया.
1: आज भारतीय शेयर बाजार में हमें उल्लेखनीय तेजी देखने को मिली है, तो आपकी नजर में इस मजबूती के प्रमुख कारण क्या रहे? क्या ये केवल निवेशकों की भावना है जो पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रही है, या फिर आर्थिक संकेतक भी इसके पीछे रहे हैं जो इस तेजी को आगे ले जा रहे हैं?
2: देखिए, आज का जो बाजार की जो मजबूती है उसके पीछे हमारे डोमेस्टिक स्ट्रेंथ है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे जो हेडविंड्स हैं, ग्लोबल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो टसल है, वो अभी भी जारी है, बल्कि और डीपन हो रही है. यूएस और ईरान में जो वॉर है वो और इंटेंसिफाई हुई है. तो आज का जो बाजार, जो हमने कुछ दिनों से देखा कि बाजार एक मजबूती के दौर में आया हुआ है, उसके पीछे हमारा जो घरेलू एक सपोर्ट है, जो घरेलू एक हमारे नतीजे हैं, जो कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट है. और दूसरा जो हमारे जो फंडामेंटल, जो अभी रिसेंट हमने देखा कि हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छे से ग्रो किए, जो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि आपका जो एक्सटर्नल रेजिलियंस कैसा है. और तीसरा, हमारा जो फॉरेक्स है वो बहुत स्टेबल है, भले ही रूपी के ऊपर अभी प्रेशर है बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस, क्योंकि क्रूड में तेजी देखी गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से, वहां पे वापस एक जो प्रॉब्लमेटिक जो सिचुएशन सामने आई है, तो जिसकी वजह से क्रूड प्राइसेस बहुत ही प्रेशर में आए हैं और रूपी के ऊपर उसका प्रेशर हमें आते हुए दिखाई दिया. लेकिन जो ओवरऑल हम कहेंगे कि जो सेंटिमेंट है वो बहुत ही पॉजिटिव है. उसके पीछे जो पहले एक ऐसी आशंका थी कि ये जो क्वार्टर है, जो अप्रैल से जून तक का जो क्वार्टर है, इसमें बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि फेवरेबल नहीं है, युद्ध हुआ और अभी भी जारी है, तो इनका इम्पैक्ट आएगा, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा. तो वैसा एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है, हमें एक बहुत ही स्टेडी जो ग्रोथ है वो हमारे जो बिजनेसेस ने इस दौरान भी की है.
0: डॉक्टर शर्मा, वी हैव आल्सो सीन दैट Nifty Bank went up by 1%, and you mentioned about corporate results. The first quarter results are now out, and we can see about 4 banks have declared positive results as well. What has been the reason behind banking performance at the fundamental level for our economy?
2: Yes, Arjun, because our banks are very resilient and strong, and our economy is growing significantly. Because with this support of the growth, banks are always performing better as compared with the previous quarters or the year on year. Because we are moving ahead. we are growing at around 7%. Last year we grew at 7.7%. For the current year also, again, we are expecting that growth will be somewhere between 6.5 to 7%. So this is the economic activity which is happening and supporting the banking sector trajectory. And second, our banks are very, very resilient. They are not

0: facing any headwind or some repercussion of such developments at the West Asia level. Otherwise, many countries are facing such kind of problems like the banking stress. But in India, our banking system remains very, very strong at every crisis. Whether the coronavirus or the before that Lehman crisis or now the geopolitical crisis. So banks are always very strong.
1: So there's no liquidity issue basically as far as banking
0: I don't see any
1: concerned.
0: Liquidity issue. Liquidity is adequate in the system. Yes.
1: But IT index saw a rise today by 1% as well. How do you see their results coming out in the first quarter?
0: Yes, Arjun, this is very important. Earlier, there were many apprehensions that AI is now impacting the trajectory of IT companies or undermining the growth of the IT companies because they will not be able to perform in the era of artificial intelligence. But I always provided my views, my positive view that there is no impact of the AI on the IT companies. If the IT shares are declining somewhere or sometime, that is the impact of Middle East crisis only or the fluctuation in the exchange rates. So that is proven now because IT companies are providing very good results and that is in front of us. And going forward, I don't see any impact of the AI on the IT companies because these are two separate segments. There is no correlation that if the AI is moving ahead with a lot of investments and that will impact the trajectory of the IT companies. These both are, I believe, the complementary segments go hand in hand to support the economy.
2: एसपी अगर पिछले सप्ताह की हम तुलना करें वापस मार्केट की हम बात करते हैं तो इस सप्ताह एक अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है तो जिसमें एफआईएस और डीआईएस की दोनों की भूमिका को सराहा गया है कि हाँ दोनों ने काफी पैसा भी मतलब निवेश किया है और साथ में एक और प्रश्न मेरा यहाँ पर यह कि स्मॉल कैप और मिड कैप में लगातार हम गिरावट भी देख रहे हैं.
0: देखिए इसमें ऐसा है पहले तो जो इन्वेस्टमेंट है जो एफआईआई और डीआईआई का इंडिया में जो रुख है वो ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव है लेकिन बीच में कुछ फ्लक्चुएशन आती है खास करके एफआईआई काफी सेंसिटिव है टुवर्ड्स द ग्लोबल डेवलपमेंट्स. जब भी कुछ ऐसी डेवलपमेंट नेगेटिव डेवलपमेंट्स होती है देन दे पुल देयर मनी एंड व्हेन देयर इज सम पॉजिटिव डेवलपमेंट देन दे पुट अ सिग्निफिकेंट मनी इन द मार्केट. तो कुल मिला के जो है उनका रवैया एक बैलेंस्ड रहता है. एक फ्लक्चुएशन बहुत होती है लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ऑन एन एवरेज दे आर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट.
2: बैलेंसिंग
0: दे आर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट. दे आर द ग्रेट इन्वेस्टर्स. दो आवर मार्केट्स आर सपोर्टेड बाय द रिटेलर्स. अभी तो हमारे ऊपर एफआईआई का कोई इतना ज्यादा प्रभाव नहीं होता क्योंकि हमारा रिटेल सेगमेंट ही बहुत तेज गति से सपोर्ट करता है. जो हमारे रिटेल ट्रांजेक्शन है वो ही बहुत अच्छे सिग्निफिकेंट लेवल पे है. और दूसरा जो आपका प्रश्न है कि जो स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स एक्चुअल में जब एक मार्केट में चर्निंग होती रहती है कई बार जो इन्वेस्टर है वो देखता है कि उसको जो लार्ज कैप्स हैं उसमें बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजन देयर इज सम प्रेशर ऑन दी स्मॉल कैप और मिड कैप तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो रही है.
2: ओके
0: मैं अपना चर्निंग करके कुछ अपना मनी प्रॉफिट बुक करके उधर शिफ्ट कर लेता हूं. लेकिन ओवरऑल जैसे एफआईआई और डीआईएस का मैंने बताया इनमें भी एक बैलेंस जो है वो निरंतर बना रहता है. जो स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स हैं वो अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी में देखेंगे दीज आर ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली. स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स में ओवरऑल ग्रोथ जो है लॉन्ग टर्म कैप मीडियम टू लॉन्ग हाँ शॉर्ट टर्म में जरूर कुछ फ्लक्चुएशन हो सकती है. दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ देयर वीकनेस एक्चुअली दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेफरेंस ऑफ द इन्वेस्टर्स. They are sometimes they invest in the blue chips and sometimes they invest in the small and mid caps.
1: So speaking of blue chips and selective stocks, you've seen that index heavyweights, as it is mentioned in the story as well, gains in index heavyweights. A company which has a great deal of business in the oil and gas space and has a weightage of 9-12%. On the Sensex went up by 2%, and as a result, we saw the Sensex also go up. What is the prospect in the oil and gas sector?
0: Prospects are very strong because we are gaining great competitiveness and strength in this segment, and we have many reforms in our domestic economy to make this sector more and more resilient and competitive.

0: And we have great possibilities to expand the businesses in this segment. And that's why I believe this is the one of the great promising sectors of the Indian economy. And as you said, the strength of the blue chips, because many of the companies are showing the positive results. Now, on an average, I believe the trajectory is somewhere between 10 to 12, 15% in the growth numbers. So this is very good in the era of such kind of developments at the global level, headwinds and geopolitics. We are growing significantly in the double digits.
1: और आगे बढ़ते हैं. एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज गिरावट देखी गई क्योंकि सेमीकंडक्टर शेयरों में लगातार नुकसान से पूरे क्षेत्र में निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ है. ताइवान का ताइएक्स 6.5%, जापान का निक्केई 4%, चीन का शंघाई कंपोजिट 3%, हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 1.8% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स लगभग 0.5% नीचे आ गया. वहीं दक्षिण कोरियाई बाजार आज छुट्टी के कारण बंद रहे. एसपी, अगर एशियाई बाजारों की हम बात करें तो लगातार एक बड़ा उतार चढ़ाव हमें देखने को मिल रहा है और सेमीकंडक्टर शेयरों का यहां पर जिक्र करना जरूर हमारे लिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि वहां पर भी लगातार गिरावट देखी जा रही है. तो ऐसे में क्या लगता है कि किन कारणों की वजह से ये गिरावट हो रही है?
0: देखिए, जो एक तो वापस जो जो युद्ध है, जो वॉर है, वो इंटेंसिफाई हुई है मिडिल ईस्ट में. और दूसरा जो मैंने बताया कि इंडिया का मार्केट रेजिलियंस के बेसिस पे, डोमेस्टिक रेजिलियंस के बेसिस पे ग्रो कर रहा है. अदरवाइज जो हेडविंड्स हैं वो वापस रिजुविनेट हो गई हैं. जो पहले हम देख रहे थे एक शांति का माहौल बन रहा है, बातचीत है, यूएस और ईरान में बातचीत होने वाली है या हो रही है या फिर आने वाले टाइम में हो सकती है, वो अब सब काफी संभावनाएं जो है वो धुंधली नजर आ रही हैं. उनमें कुछ अब ऐसे क्लियर कट हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि ये किसी नतीजे पे पहुंचेंगे, बल्कि जो युद्ध है वो प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया शेप ले रहा है. लेकिन हम देख रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी जो है ऐसे वातावरण में भी बहुत अच्छे से रेजिलिएंट शो कर रही है. जैसे आपने बताया कि ये इकोनॉमीज जो है इमर्जिंग मार्केट्स आर फेसिंग द फ्लक्चुएशंस, वो बात वो युद्ध का सीधा प्रभाव है कि मार्केट्स कोई डायरेक्शन नहीं ले पा रही है. जैसे आज के दिन कुछ भी स्टेटमेंट आएगा यूएस की तरफ से तो पॉजिटिव है स्टेटमेंट, तो मार्केट्स एक पॉजिटिव मोड में आ जाएंगे. कुछ उसमें नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव चले जाएंगे. तो उनका एक सस्टेन्ड जो रवैया जो वो नहीं बन पा रहा.
1: अभी अगर चाइना के मार्केट की हम बात करते हैं तो वहां पर देखा जा रहा है कि लंबे समय से शेयर बाजार में उथल पुथल सी स्थिति देखी गई है. तो निवेशकों की क्या चिंता बढ़ रही है चाइना के मार्केट में पैसा लगाने में, वो एशिया के जो दूसरे मार्केट्स हैं या भारत का रुख कर रहे हैं?
0: देखिए, भारत तो एक प्रॉमिसिंग इकोनॉमी है ही. भारत की तरफ जो रुख है वो तो हमेशा बना रहेगा और आने वाले टाइम में ये रुख और मजबूत होगा क्योंकि हमारी जो रिफॉर्म्स हैं जो हमने पिछले काफी वर्षों में की, 10-12 वर्षों में की, उनके अभी हम रिजल्ट देख रहे हैं. पोस्ट कोविड ईयर्स में उनके बहुत ही विजिबल रिजल्ट आने शुरू हुए जो कि 21-22 से लेके हम 25-26 तक ऑन एन एवरेज 7% से ऊपर ग्रो किए हैं. और ऐसी अवस्था में हमारा एक्सपोर्ट का अगर आप पिछले 3 महीने में देखेंगे, अप्रैल, मई, जून, तो एवरेज जो है 13% बनता है. एक बहुत बड़ी चीज है कि ऐसे माहौल में जब ग्लोबल इकोनॉमी इज इंपैक्टेड बाय सो मेनी हेडविंड्स, डिमांड इज डिसेलरेटिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ इज आल्सो डिसेलरेटिंग, इंडियाज एक्सपोर्ट्स आर ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली इन दी हाई डबल डिजिट्स, तो एक बहुत बड़ी चीज है. और लेकिन जब चाइना का भी अगर हम आप 2026 से लेकर 30 तक का एवरेज ग्रोथ रेट देखें, दैट इज लेस देन 4%. इंडिया इज 6.5-6.6%. आप अंतर देखिए कितना है. तो चाइना का स्टोरी काफी डिमिनिश हो रहा है और जो उसके टेक्नोलॉजिकल स्टॉक्स हैं, जैसे अभी आपने बात किया कि जो सेमीकंडक्टर के शेयर्स में वो एआई का जो एक कई बार बहुत ही एम्पलीफायर इंपैक्ट आता है कि एआई से जो स्टॉक्स हैं उनको बहुत बढ़त मिलेगी. और एक बार में फिर कुछ ऐसी न्यूज आ जाती है कि जी शायद उस तरीके से ये आगे नहीं ग्रो की है, तो प्राइसेस इंपैक्ट होते हैं.
2: Let's have a look at the foreign exchange reserves now.
1: जी हाँ, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 10 जुलाई को खत्म हुए सप्ताह में आंशिक रूप से 964 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 675.1 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है. भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार इस सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा संपत्ति 930 मिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 546.5 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई है और सोने का भंडार 24 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 105.2 अरब अमेरिकी डॉलर का हो गया है. एसपी, अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे फॉरेक्स रिजर्व की, ऐसे में ये जो आंकड़े हैं थोड़ा बहुत मतलब हमें ये दर्शाते जरूर है कि भारत की जो स्थिति है और गति है पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रही है.
0: जी, मैंने बताया आपको कि

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं रोहिणी लेकर गीत मेरे मन में एक बार फिर से स्टूडियो से साथ हूँ दोस्तों। और दोस्तों बड़े प्यारे एहसास आपसे साझा करूंगी और सदाबहार गीतों का साथ भी बना रहेगा। आपने कभी महसूस किया होगा कि कई दर्दों की गहराई कभी कभी केवल आंखों में आए आंसू से नहीं मापी जाती, बल्कि कई बार सबसे गहरी नमी पलकों के पीछे रह जाती है और पलकों के पीछे से गहराई को बताने का ये गुनगुनाता अंदाज आप तक मैं पहुंचाऊंगी इस आपके गीत मेरे मन मीत में। और जिसे आप सुनेंगे 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये गीत जो कि है तलाश फिल्म से। इस गीत को आवाज दी लता जी और रफी जी ने, इस गीत को अल्फाज दिए मशरू सुल्तानपुरी साहब ने और संगीत ST बर्मन साहब का। तो आइए सुनते हैं, आगाज करते हैं गीत मेरे मन मीत का इस गीत के साथ।

0: तो फरमाना।
1: ये तो पलकों से पीछे की बात थी, लेकिन जनाब अगर आपके ख्यालातों की बात हो तो ये गीत बड़े खूबसूरत अंदाज में इन बातों को बयां करते हैं। अगला गीत आए मिलन की बेला फिल्म से आप सुनेंगे लता जी की आवाज में। इस गीत को अल्फाज दिए हसरत जयपुरी साहब ने और संगीत से सजाया शंकर जयकिशन जी ने। तो आइए सुने ये अंदाज।

जी हाँ, इतने प्यारे गीत सुनकर बुरा तो शायद कोई नहीं मना सकता। 100.1 MHz पर गीत मेरे मनमीत दोस्तों आप सुन रहे हैं और ये अगला गीत आपकी नजर करते हैं। जी हाँ, तेरे घर के सामने फिल्म से ये गीत है। इस गीत को अल्फाज दिए हैं हसरत जयपुरी साहब ने, आवाज दी है रफी साहब और लता जी ने, और दोस्तों संगीत से इस गीत को सजाया है एस डी बामन जी ने।

दोस्तों, ईश्वर की बनाई इस दुनिया में ईश्वर का तो शायद यही सोचना है कि कुछ नहीं अच्छा तो दुनिया में बुरा भी कुछ नहीं, कीजिए सब कुछ मगर अपनी जरूरत देखकर। जी हाँ बिल्कुल, और जरूरतें बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं दोस्तों। आओ मिलकर ढूंढ ले कोई वजह एक होने की, यू बिखरे बिखरे ना तुम अच्छे लगते हो ना हम। 100.1 MHz पर गीतों का ये प्यारा अंदाज, सुरीला अंदाज आप सुन रहे हैं मेरे यानी रोहिणी के साथ, और ये अगला गीत मेरे जीवन साथी फिल्म से, आइए सुनते हैं।

कहते हैं ना कि आओ कि अब ये दिल चैन तो पा जाए, भटका राही कोई मंजिल को पा जाए। 100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं गीत मेरे मन मीत। लेकिन श्रोताओं, ये जो घड़ी की टिक टिक है ना, ये मुझे बार बार कह रही है कि आज गीत मेरे मन मीत को मुझे यहीं समेटना होगा। तो फिलहाल मुझे यानी रोहिणी को दीजिए इजाजत, आपको छोड़े जाती हूँ एक और बेहद सुरीले तराने के साथ। जी हाँ, अंजना फिल्म से ये गीत आप सुनेंगे, जिसे मखमली आवाज से सजाया है रफी जी और सुमन कल्याणपुर ने। और इस गीत को आवाज तो इन्होंने दी, लेकिन अल्फाज दिए आनंद बख्शी जी ने, और संगीत का आनंद आप लेंगे लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी के अंदाज में। तो आइए सुनते हैं, और फिलहाल मुझे रोहिणी को दीजिए इजाजत। 100.1 MHz पर आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल आप सुनते रहिए कुछ इसी अंदाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देव भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जोड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने PGI चंडीगढ़ में PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। नीति आयोग ने कल नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्र सेना रेड्डी नल्लू ने लोक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य में जनगणना 2027 का शुभारंभ किया। देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना का पहला चरण 31 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान आंकड़ों के संग्रह, सत्यापन और निगरानी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तथा वेब आधारित प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूँ आपके साथ अंजू और कार्यक्रम लेकर आई हूँ आपका मनपसंद निशिकंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

देखो ना, न जाने क्या हुआ है मुझे तुमसे मिलने के बाद। हर दुआ में शामिल हो तुम मेरी जिंदगी में आने के बाद। बेकरार सा रहता था दिल मेरा हमेशा, पर अब सुकून मिलता है मुझे तुम्हारी बाहों में आने के बाद।

हर आहट पर लगता है कि तुम आए हो, हर आहट पर लगता है कि तुम आए हो, हवा के हर झोंके में तुम्हारा ही साया लगता है। अब तो लौट आओ की सांसें भी पूछती हैं कि तुमने किसे इस कदर दिल में बसाया है।

तुमसे मिलने से पहले तक सिर्फ जी ही तो रहे थे हम, तुमसे मिलने से पहले तक तो सिर्फ जी ही तो रहे थे हम, तुमसे क्या मिले कि जिंदगी से ही मोहब्बत सी हो गई।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

जिन दोस्तों ने अभी अभी ट्यून इन किया है उन्हें हम बता दें आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं अंजू आपके साथ, कार्यक्रम निशिगंधा।

तुम पास हो तो हर लम्हा सुहाना लगता है, तुम पास हो तो हर लम्हा सुहाना लगता है, वरना ये सारा जमाना बेगाना सा लगता है।

तेरा दीवाना आज तुझ पर दिल हार बैठा है, तेरा दीवाना आज तुझ पर दिल हार बैठा है। ये देख कि वो अपनी रूह को भी तेरी चाहत में उतार बैठा है।

तेरी चाहत में खुद को भुला दिया, मैंने अपने हर पल तुझ पर लुटा दिया। मेरा दामन तो है तेरे कदमों की छाँव में, अब कोई फर्क नहीं धूप और छाँव में।

जमाने भर की परवाह छोड़ दी मैंने, जमाने भर की परवाह छोड़ दी मैंने, जब से तेरे साथ की कसम ले ली। अब तो मेरी किस्मत तेरे ही हाथों में है, मैंने अपनी खुशियां तेरे कदमों में जुड़ी।

दोस्तों, कार्यक्रम का आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और आपसे 1:10 पर फिर से मुलाकात होगी कार्यक्रम गीत सुहाने लेकर। कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz पर। मिलते हैं थोड़ी देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देव भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की। इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल फिनलैंड की यात्रा के दौरान वहां के प्रमुख प्रौद्योगिकी और औद्योगिक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकें की। नोकिया कॉरपोरेशन के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बैठक में उन्होंने अगली पीढ़ी की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों 5G और 6G, डिजिटल अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार साझेदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने युवाओं को कर्तव्य भाव, सेवा और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर विकसित भारत 2047 के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया। डॉ. मांडविया कल लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित मेरा युवा भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

दोस्तों, समय हुआ है 1:11 और 23 सेकेंड, और अब समय है कार्यक्रम गीत सुहाने का। मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजू, लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत गीत। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

मिले तो मुकम्मल हो जाती है दुनिया मेरी, तू मिले तो मुकम्मल हो जाती है दुनिया मेरी, तेरे संग ही जीना है मुझे, अब यही आखिरी चाहत है मेरी।

अब तू जो कह दे वो पत्थर की लकीर है, अब तू जो कह दे वो पत्थर की लकीर है, मुझे तेरी हर बात पर इकरार है, क्योंकि तू ही मेरी तकदीर है।

तूने इस कदर बसाया है खुद को मेरी आंखों में, तूने इस कदर बसाया है खुद को मेरी आंखों में कि अब तेरे बगैर कहाँ जाएंगे हम, तू ही तो रहता है हर वक्त मेरी बातों में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

दिल में बेकरारी सी है और आंखों में तुम्हारा ही ख्वाब है। दिल में बेकरारी सी है और आंखों में तुम्हारा ही ख्वाब है। तुम मिले नहीं तो क्या हुआ, तुम मिले नहीं तो क्या हुआ, इस धड़कन में बस तुम्हारा ही तो राज है।

जमाने भर के रास्ते मुझे तेरी तरफ ही लाते हैं, जमाने भर के रास्ते मुझे तेरी तरफ ही लाते हैं। मुझे छोड़कर जाओगे कहाँ, कदम तो बस मेरी तरफ ही आते हैं।

आज हवाएं भी झूमकर पैगाम लाती हैं, आज हवाएं भी झूमकर पैगाम लाती हैं कि देखो मेरा महबूब आता है इन वादियों में, तो ये बहारें भी मुस्कुराती हैं।

माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

दोस्तों अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और समाचारों के बाद कार्यक्रम रात सुरमई लेकर एक बार फिर से रहेंगे आपके साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भवः की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मध्य प्रदेश के इंदौर और मंदसौर में कई स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। यह अभियान लगभग 70 करोड़ रुपए मूल्य के 70 किलोग्राम एमडीएमए ड्रग्स की कथित तस्करी से संबंधित जांच के सिलसिले में चलाया गया। ईडी ने बताया कि यह जांच इंदौर अपराध शाखा द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर की जा रही है। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद हुए हैं। साथ ही आरोपियों की संपत्ति और वित्तीय लेनदेन से संबंधित विवरण भी प्राप्त हुए हैं। कई दस्तावेज और डिजिटल उपकरण फॉरेंसिक जांच के लिए जब्त किए गए हैं। चीन के दक्षिणी पश्चिमी शहर चोंगजिंग में कल हुए भूस्खलन में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 34 लोग लापता हैं। सरकारी मीडिया के अनुसार बचाव दलों ने मलबे से 10 लोगों को जीवित निकाला, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। सरकारी प्रसारक सीसीटीवी ने बताया कि ये भूस्खलन सुबह चोंगजिंग के पेंगशुई काउंटी में हुआ। चट्टानों और मिट्टी का विशाल मलबा पहाड़ी से नीचे गिरा और 10 से अधिक रिहायशी इमारतें इसकी चपेट में आ गईं। घटनास्थल पर 800 से अधिक बचावकर्मी राहत और बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर ऑलराउंडर सर गारफील्ड सॉबर्स का कल 89 वर्ष की आयु में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते निधन हो गया। सर गारफील्ड सॉबर्स ने 93 टेस्ट मैचों में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला विश्व कप के लिए

दोस्तों, समय हुआ है 2:11 और 10 सेकंड और ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजू और लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत गीत। रहिए इस घंटे मेरे साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार।

तेरी नजरों में कुछ तो बात है, तेरी नजरों में कुछ तो बात है जो हर बार हमें वहीं रोक लेती है।

जब दिल टूटता है तो आवाज़ नहीं आती, जब दिल टूटता है तो आवाज़ नहीं आती, हर किसी को मोहब्बत रास भी नहीं आती।

की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

चांद की चांदनी से एक पालकी बनाई है, ये रात भी हमने सिर्फ तुम्हारे लिए सजाई है। तुम पास हो तो धड़कने भी गुनगुनाती हैं, ऐसा लगता है जैसे खुद खुदा ने ये खुशियां बरसाई हैं।

दिल में उतरने में तो सदियां लग जाती हैं, दिल में उतरने में तो सदियां लग जाती हैं, और तुम पूछते हो कि तुम्हें पता है कि मोहब्बत क्या है।

दोस्तों, अब समय हुआ है समाचारों का। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आपके साथ रहेंगी भारती, कार्यक्रम हमराही लेकर। मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार, शुभ रात्रि।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण

0: लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भवः की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे राष्ट्र को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर कल सिलीगुड़ी पहुंचे। बागडोगरा हवाई अड्डे पर राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उनका स्वागत किया। श्री शाह आज जुमागाछ में बीएसएफ की 18वीं बटालियन की सीमावर्ती चौकी का दौरा करेंगे। बीएसएफ के जवानों से बातचीत के अलावा श्री शाह प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा एक वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लेंगे। वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद गृहमंत्री सिलीगुड़ी स्थित उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्तोनिया की राजधानी टालिन में एस्तोनियाई विदेश मंत्री मार्केस साहकना से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, डिजिटल बदलाव, साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में भारत एस्तोनिया सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में टीम अरुणाचल के 10 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश ने प्रमुख बुनियादी ढांचे और संपर्क परियोजनाओं के माध्यम से विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हिमाक्षी पंवार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh yesterday. The projects aim at strengthening connectivity, improving passenger convenience and

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती, और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं छलिया बापू के इस प्यारे से गीत के साथ, जिसे अपनी आवाज से सजाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने।

अभी आपने गीत सुना छैला बाबू से। दूरियां चाहे कितनी भी हों, सच्चा प्यार हमेशा दिलों को करीब रखता है। और जब प्यार दिलों में बस जाए तो उसका चेहरा किसी परी से कम नहीं लगता।

सच्चे प्यार में इंतज़ार भी एक खूबसूरत एहसास बन जाता है और इंतज़ार की हर घड़ी प्रेम की गहराई को और बढ़ा देती है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम चल रहा है हम राही। प्यार की मधुर मुस्कान, प्यार की मधुर मुस्कान कब दिल चुरा ले, प्यार की मधुर मुस्कान कब दिल चुरा ले पता ही नहीं चलता। प्रेम की मासूम अदाएं, प्रेम की मासूम अदाएं कब दिल जीत ले पता ही नहीं चलता।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं।

या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन

प्यार के बिना कहे भी दिल की बातें समझ आ जाती हैं। प्यार में बिना कहे भी दिल की बातें समझ आ जाती हैं और पता ही नहीं चलता कि मन कब सुकून और उजालों से भर जाता है।

तुम्हें छोड़कर भले ही राहें अलग हो जाएं, तुम्हें छोड़कर भले ही राहें अलग हो जाएं, यादों की खुशबू हर पल साथ रहती है और मोहब्बत हर धड़कन में जिंदा रहती है।

और समय कह रहा है कि आप आपसे अनुमति ले ली जाए। जाने से पहले यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, 4:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। छोड़े जा रही हूँ आपको हमराही कार्यक्रम के आखिरी गीत के साथ, और जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार

0: कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
1: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर कल सिलीगुड़ी पहुंचे। बागडोगरा हवाई अड्डे पर राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उनका स्वागत किया। श्री शाह आज जुमागाछ में बीएसएफ की 18वीं बटालियन की सीमावर्ती चौकी का दौरा करेंगे। बीएसएफ के जवानों से बातचीत करने के अलावा श्री शाह प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा एक वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लेंगे। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश में आज और कल 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खडसे तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच मध्य पूर्व में संघर्ष और तेज हो गया है। हॉर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों ने आज एक दूसरे के बुनियादी ढांचे और सैन्य ठिकानों पर हमले किए। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर ऑलराउंडर सर गारफील्ड सॉबर्स का कल 89 वर्ष की आयु में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण निधन हो गया। सर गारफील्ड सॉबर्स ने 93 टेस्ट मैच में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi launched multiple development projects worth around 25,000 crore rupees from Haryana, Punjab and Chandigarh yesterday. The projects aim at strengthening connectivity, improving passenger convenience and accelerating economic development in the region. In Jalandhar last evening, the Prime Minister inaugurated and laid the foundation stones of various rail and road infrastructure projects worth over 5,470 crore rupees. He inaugurated 75 redeveloped railway stations, including Jalandhar Cant, under the Amrit Bharat Station Scheme. Addressing a public gathering in Jalandhar, Prime Minister Modi said the NDA government at the centre prioritises serving every citizen of India, making their lives easier. Prime Minister also flagged off Sant Ravidas Express train from Jalandhar Cant Railway Station. He also inaugurated national highway projects including a 4-lane greenfield, Delhi Amritsar Katra Expressway and

लिखा एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम अरुणिमा की लम्हे फिल्म के इस प्यारे से गीत के साथ। गीत को अपनी आवाज से सजाया है हरिहरन ने।

अभी आपने गीत सुना फिल्म लम्हे से, इस गीत के संगीतकार शिव हरी और गीतकार आनंद बख्शी। आगे बढ़ते हैं, अगला गीत सुनते हैं फिल्म आनंद से लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार गुलजार, संगीतकार सलील चौधरी।

और इस गीत को अपनी आवाज से सजाया लता मंगेशकर ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम है अरुणिमा।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म अमर प्रेम से किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: अभी आपने गीत सुना फिल्म सागर से एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में, गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार आरटी बर्मन। आगे बढ़ते हैं, अगला गीत सुनते हैं फिल्म सत्य पे सत्ता से आशा भोसले, किशोर कुमार, भूपेंद्र, सपना चक्रवर्ती, बासु और उनके साथियों की आवाज में, गीतकार गुलशन बावरा, संगीतकार आरटी बर्मन।
1: Mm-mm.

0: कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म इश्क पर जोर नहीं से लता मंगेशकर की आवाज में गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार एस टी बर्मन।
1: मेरे बैरागी भंवरा

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम चल रहा है अरु नीमा।

अभी आपने गीत सुना फिल्म खून भरी मांग से साधना सरगम नितिन मुकेश की आवाज में, गीतकार इंदिवर, संगीतकार राजेश रोशन।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म दोस्ताना से किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

और समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जल्दी मुलाकात होगी, यानी 5:10 पर। आप कहीं मत जाइए, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और जो आखिरी गीत इस कार्यक्रम का, वो है फिल्म हरियाली और रास्ता से, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में। छोड़े जा रहे हूँ कुछ प्यारे से गीत के साथ, और जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का भी शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण किया। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को भी रवाना किया। यह अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवोभव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। इससे पहले हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन

से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को भी रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर कल सिलीगुड़ी पहुंचे। बागडोगरा हवाई अड्डे पर राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उनका स्वागत किया। श्री शाह आज जुमाकाच में बीएसएफ की 18वीं बटालियन की सीमावर्ती चौकी का दौरा करेंगे। बीएसएफ के जवानों से बातचीत करने के अलावा श्री शाह प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा एक वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लेंगे। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 138 किलोमीटर से अधिक लंबाई की 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से भूमि पूजन करेंगे। इन परियोजनाओं में 53 किलोमीटर से अधिक लंबी पुणे शिरूर 6 लेन सड़क, करीब 30 किलोमीटर लंबी हटपसर येवत राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना और 24 किलोमीटर से अधिक लंबी तालेगांव चाकन शिकरापुर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना शामिल है। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, यात्रा समय की बचत होगी और यातायात जाम से छुटकारा मिलेगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फिनलैंड की यात्रा के दौरान वहां के प्रमुख प्रौद्योगिकी और औद्योगिक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकें की। नोकिया कॉरपोरेशन के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बैठक में उन्होंने अगली पीढ़ी की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों 5G और 6G डिजिटल अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार साझेदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। बैठक में भारत के दूरसंचार क्षेत्र में नोकिया की दीर्घकालिक भूमिका का भी उल्लेख किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने श्री हरजीत सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त होने पर बधाई दी है। श्री रिजिजू ने एस मुनवारी बेगम को उपाध्यक्ष और गिलेन ई सूजा टिकलो को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य नियुक्त किए जाने पर बधाई दी। अरुणाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में टीम अरुणाचल के 10 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश ने प्रमुख बुनियादी ढांचा और संपर्क परियोजनाओं के माध्यम से विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। राज्य मंत्रिमंडल ने नागरिकों को बेहतर, सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य एवं कल्याण सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कई नवाचारी पहलों को भी मंजूरी दी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समय हो गया है प्रोग्राम भूर सुहानी का। आप सबका एक बार मैं फिर से स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की इस भजन के साथ।

जीवन में शांति हमें सिखाती है कि जब मन में भक्ति और विश्वास हो तो जीवन का हर वनपथ भी सुंदर बन जाता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

जैसे सुबह की ठंडी पुरवैया मन को ताजगी देती है, वैसे ही अच्छी विचार, अच्छे सोच जीवन में नई ऊर्जा भर देते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम है भोर सुहानी।